0: আজ প্রোগ্রাম কমি আসে সরকম ফাহ করলাম যে হ্যাঁ ইংগে তো মেয়েদু হামা মৌসুম দেখুন গাতলতে কমে মেয়েগু তুমি মানে মেয়েদুকে মেন দুর্ফ হতি নিচে হামা হামে হুদ সমাদ নেরোবা ফেঙ্গে তো ইবো কো বারে হামাকু গুগুরুং আদি বিলাঙ্গনু গগড়ি এক তিরি সসমেল ব্যাগ দ্বানিক মল্লা ফা করে বেতি দিহ রাজ্য মৌসুম বহি কৌমি দারে মেগু তবে গাফতাল তলম ফেশিগিং আটু সিটি হামে হুদ সমাল নেরোবা ফেমে হুরি আফরাত কো মৌসুম সমাল কন্দে বাতিঙ্গে তো আলগো মেঙ্গে আদুকে রাজ প্রোগ্রাম করে দার কমে তো কুস কমে সেং ইদারে কন্দে বা কমে সেং খিদমত কা তাফসিল কন্দে বা ফুনে বা মালুমাত কেনস্তেঙ্গে তো আদি খিদমে বিবাহ মেদলগমে বিবাহ দখানি হামিদুসরগিন বেফলুং বেনুম ফুলওয়ান কমে কমাল গমে নামি পেলবেনি বোহিয়া বাহিকম গ পোর্টাল ইংগে তো ইমবেন মি দেন ওয়ারগিন বেফলুং বেন মিওগুত বেনু কোরাবান পোর্টাল বোহিয়া বাহিকম গ পোর্টাল আবে গতং আলগমে বিবাহ দখাল মটকা বিবদ্ধ কলানি স্টেট মিনিস্টার উস্তাদ আহমদ নাসিম আসসালামু আলাইকুম
1: ওয়া আলাইকুম সালাম
0: মিহার বোহিয়া বাহিকম পোর্টাল এমএন মি আসু কোবা তুমি পোর্টাল দে বা খিদমত তক কে
1: আদে বড় বড় শুকরিয়া এঙ্গে তুমি ওরা ফুরতম কো সমর বড় শুকর আদা করাম আদি রাজ্য গাডু মি ফুরস গম দেবিতি আদে বোহিয়া বাইকম মি পোর্টাল লকি সরকার মিহার বোহিয়া বাইক এমএন মি সিয়াসত গ দশুং হুলওয়ালা ফাওয়া একি কি স্কিম তক me application hushe halu matta ka holwale fa portal le me portal ge fori hama namaki bohiyavahikam.gov.housing.gov.mv me portal lo libe khidmat ka balala ro alun men kane kuri kuri yulanta ka guli gam ve sari amu ko fa usul ta ka balada ro gos magad go tegga me দে প্রোগ্রাম এলাম বাণি ইউলাম কফ এই আইলি বহিয়া বহিকম গো প্রোগ্রাম কা গোতিক দুর প্রোগ্রাম কা দে মি মিগে তাফসিল তাকদা ইরুগা আইলি বহিয়া বহিকম গো প্রোগ্রাম গে তেরেইন আলগন বেং ইউলান কো ফওয়ানে মালে দিরুল রাইত দ ফ্ল্যাট দুকুর মাগুলে স্কিম কা মালে দিরুল রাইত ন দিরুল ম বিন্দু কুর মাগুলে উসুল কা হিয়া আদি বেশি ফাহি মাশ্রু দর্শন ফুলেট হওয়াল নক ইউ ডিপসা ফারায় তক ফুলেটং আদি মুশে হেলে ন স্কিম ক আদি খাস ইস কন্দে বে ন কুলুদ তরিক হন ফারায় তক ক্যাটাগরিয়া ফুলেটং আদি মুশে হেলে স্কিম মি থিং স্কিম ইন আলোন মাক্স মাস্টার দা হাতর স্কিম ইন আলোন মি হিঙ্গানি আইলি বোহিয়া বহি কম্পিউটারে এই আলোন মি সরকারুগে এম এ ফুরতমা বহিয়া বাহিকা গোলে গতুম হুড়ালি প্রোগ্রাম কে দেন আইলি বহিয়া বাহিকা প্রোগ্রাম কে এম এ ম্যাগন আসাস কি এভেস মুদলে নত বহিয়া বাহিকা কে এভেস প্রোগ্রাম কং এভেস এচিল মি থানে গোচ এভেস নত মি ফ্লেট এভেস মি হাত ন লিব ফান এফারাতক এফারাতক আইলায়া আবুরুরি কমায় কদ্দি রুলবে ন থানে ফোর কদ্দির মটকা ইউলান প্রবণ প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম দশুং আলোন মি দেনেবি হাতারু স্কিম হিঙ্গনি মি হামে এখানে এভস মি হাতন লিভ ফর নেফার আতক হিঙ্গ হাস প্রোগ্রাম কতুগা দেবন প্রোগ্রাম কি গোতি গদর প্রোগ্রাম গোতি প্রোগ্রাম তেরে আলোন মি ওগতু ফার্স্ট স্কিম এব কুড়ি একজন ইংগত এগে তেরেগ সুরতম স্কিম কি মালে দিরুলে রাইতন বন্দার গো দুকুর মটক হুলওয়ালি ইউলান কুড়ি সুলে দশং হুলওয়ালে উন স্কিম মি স্কিম কি এমিহা গামি মিহান তো ফিরি মিহা আতু গ বোহিয়া বাহিকমে লিবি ফ ওত স্বেস এ বোহিয়া বাহিক নে পাউস বিমক বন্দার গোচকে এদুমুগে ফুরসত ফুরওয়ালে ফাওয়া স্কিম দেমিয়তি ম্যাগন গোতে কুড়িগে এডমিনিস্ট্রেশন হিঙ্গা ফুর বিমবেরিয়াগে স্কিম বিমবেরিয়াগে খাস স্কিম আলগুন মেন বারবার শকুয়াত লিবুন বিমবেরিয়া স্কিম গে তেরে এম বড়ু কামক ফাহ কুরউনি জয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশনস তা কায়কো আইলা ফরাত কায়কো গুড়িগে গোতি লিবি ফুর ফরাত তকুন এই ইজতিমায় গোতুং আদি আইডি কুলুং গে তেরে ইনভেস্ট আনে ইন্তজাম করবেন করে দিদান তামাক নুয়ানি ফরাত গোচ ওয়াকি ওয়াকি ওয়াকি করুম টাকা কমে মিহে ওয়াকিং গোচ্ছে ফুরসত হোদ ফরাত হুশল চাকুয়া গুলিগম স্কিম বিমেরি খাস স্কিম ক্যাটাগরি একে এম ক্যাটাগরি একে মিলি জয়েন্ট অ্যাপ্লিকেন্ট তুমি তেরে ফরাত কালি ফুরি গোদিত ওয়াকি ওয়াকি গোচ ওয়াকি করুম টাকা ওয়াকি ওয়াকি গোদ হোদম টাকা শারুত ফুরি হামি মালে ফ্লেটেন ঘুরেগেন বিমা সরফুর হামানুই ফরাদ এই সরকার দুকরি ফ্লেটেন ওয়েগেন বিমা সরফুর হাম ফুর নুই ফরাদ কুমবেস আবার গিনান এডি ফেব্রুয়ারি মি ফ্লেট দুকুল্লাফ গোচে পেনুম ওয়াকাম এম এ গোত বালালার গে বি হুনে দি ফুরি ফ্লেট দুকুল্লা সরকার দুকুল্লাফ গোচেন এদুমটকা সিঙ্গল অ্যাপ্লিকেশন তেরে ফ্লেট গোতি লিফুর ফরাত তকবস বিদন বিমরি স্কিম তেরে গোতি লিফুর ফরাত তকবস ফ্লেট আঙ্গে দুম ফুরসত ওনান দেন বিম মিকে গোতি গে দ প্রোগ্রাম গে মি হুরিয়া ক্যাটাগরি তা এস কি মি হুরিয়া স্কিম তকবস গোতি মিলিবেনি রসমালে এই মানে কি গিরাওর গুলিফল আদি হুইমালে ফেস দিনকুং গোতি লিফুরি ফরাত তগ তরেম বেস মি স্কিম গ দশুং এপ্লাই কুরবানাম গোতি লিবডা গনওয়ানি রাসমালে এহেম মে একং আদি গোতি গ প্রোগ্রাম তরেম বেস স্পাউস আতুগা বিমেন নোত ফ্লেটং ওগেং হুশাহালু বানাম বেস মি গোতি লিবেনি রাসমালে এই বলি মি মি মিহার পোর্টাল দু মিলিবে সমালু বেলবম বি কমকি মি পোর্টাল গে কলা ডিজাইন কোফামিওতি হাগিগত গওয়ার ফাসে হ্যাং অ্যাপ্লিকেশন হুশেড়ে গত বাই মাউলুমাত কে দাওলত কি ইদারা তাকুং আলোনমেন গেনেস কে ইন্টিগ্রেট কোগেন ফুরিহাম কুরন নুজে হুনস ফুরিহাম কুরেবে গোতা আ অন্ন মাউলু মাতে মিসালা কাস পোস মাউলু মাত সাইডি কার্ড নাম্বার জে হি মাকাও মেন্না মে বাকি মে মাউলু মাতে জেনারেট কুরেবে গোন হাদাফা এগোতা মে অন্ন মি পোর্টালে পোর্টাল বেণু কুরুমগা সামালু কঞ্জে সামালু কঞ্জে জে এমমে মুহিম কামাকি মি পোর্টাল লগইন কুরেবেনি ইফাস মেদুয়ারিকো ইফাস মেদুরিকো লগইন ওয়া এরুগা ইফাস অ্যাকাউন্ট কি ভেরিফাই করিফা ওয়া অ্যাকাউন্ট কা ওয়া দেন ইফাস ভেরিফিকেশন প্রসেস কি ইফাস অ্যাপ্লিকেশন মেদুরিকো নতা ওয়েবসাইট মেদুরিকো বেস কুরেবেন কা ওয়াকি তানাক ফিজিক্যালি দুরুয়া কা নুজেন হাম আমিল্ল ফোন নতা ল্যাপটপ মেদুরিকো ইফাস অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই কুরেবেন ইংগেতো দেন ইফাস অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই কুরুম কুরিমা আইলি বোহিয়া মি বোহিয়া ওয়াই কা পোর্টাল গে তেরেয়া অ্যাক্সেস নেবেন লগইন করবে না লগইন করিমা কমে অ্যাপ্লিকেশন কমে স্কিম প্রোগ্রাম এদি হুশাহ এবে ফুড়ক সরসপুর প্রোগ্রাম এদি এবে ফুড়ক হুশাহু বা এরুগা এবে ফুড়ক ফুরুতম কুড়বঞ্চে কমকি শারুতু হমবে তো বেলুম গেতো এ শারুতু হমবে তো বেলিমা এ শারুতা শারুত বিশালক বোনাক মঞ্জ মালে দিল রাইতুন ফ্লেট দুকুরুমগে স্কিমগে তেরেইন অ্যাপ্লিকেশন হুশাহুবা কম বা নামা ಫರಾತುಂ ಫುರ್ತಮ ಕೊರಬನ್ ಜೆಹೆ ಕಮಕಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹುಷೇಳುಮ ಗುಳೆ ಶರತ್ ಫುರ್ಹಂ ವೇತೊ ಬೆಲುಂ ದೆನ್ ಎ ಶರತ್ ಫುರ್ಹಂ ವೇತೊ ಬೆಲಿಮ
0: ದೆನ್ ಕೊರೆ ವಡನ ಫಸೆ ವಂದ ಆರ
1: ಫಾರ್ ಶರತ್ ಫುರ್ಹಂ ವೆಜ್ಜಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಬೆ ಫುಲ್ ನ ಫೆನಿ ವಡಾ ಗನ್ನ ವಾನೆ ಗೆತೊ ದೆನ್ ಶರತ್ ಫುರ್ಹಂ ಅನುವಾಣಮ ಎಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಎ ಎ ಸ್ಕೀಮ ಕ ಕುರುಮತ್ಲುಮ ಗೆ ಫುರ್ಸತೊ ಬಂದು ವಾನ್ ಎಕಮಕು ಹಂದುಮ ಫುಳು ಬಹಟ್ಟವನ್ ಜೆಹೇನ ಕಮೆನ್ ಏಯ್ ಅದಿ ಎಹೆಂ ಸ್ಕೀಮ್ ತಕ ಎಹೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ವೆಸ್ ಎಬಹುರಿ ಎಹೆಂ ವಿಮ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ತೆರೆ ವೆಸ್ ಹುಷೇಣು ಮುಗ ಫುರ್ಸ ತೊನ್ನಾನ ಎಹೆಂ ವಿಮ ಮಿಸಾಲಕ ಆಯ್ಲಿ ಬೋಹಿಯಾ ವೈ ತೆಮ ಕೆ ಅಳುವನು ಮೆಂಗ ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನ ಶಾರುತ್ತ ಕೆ ಮನಾಫ ಹುರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಮ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಶಾರುತು ಹಮ ನುವಾ ಬೇ ಫ್ಲೂನ್ ನ ವೆಸ್ ಗೋತಿಗೆ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತ ಗೆ ತೆರೆ
0: ಹುರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಬೇರೆ
1: ವಿದಮತ ಎಮ್ಮೆ ಎವೆ ಸಮ ಶಾರುತು ಹಮ ವೇ ತೊ ಬಲ ಬಲ್ಲವಾ ಲಬ್ಬಾಫ ಶರ್ತು ಫೂರಿ ಹಮ ವಾಕಮ ವಾಣಮ ಎಸ್ ಕೀಮ ಕಾಗುಳೆ ಫೋಮ್ ಫೆನಿ ವಡಾ ಗನ್ನ ವಾಣ ದೆಮ್ ಫೋಮ್ ವಸ್ ಹುಷಾಳು ವ ಮಿನಗಣಿ ಗಾಯಕ ಗಣಕ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಗೆ ತೊ ಏಯ್ ಶಾರುಚ್ ಫೂರಿ ಹಮ ವೇ ತೊ ಬೆಲಿ ಮದೆಂಗ್ ಯೋತಿ ಗಾಯಕ ಗಣಕ ವರ್ಗಿನ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫ ದೆಗ್ ಏಗ ಫಹುಂ ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹುಷಾಳ ಮಿನಗಣಿ ಗಾಯಕ ಗಣಕ ಹಮ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ ಮಿನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಮಿನಿಟ್ ಅವರ ಕದ್ದಿನಿ ದೆಂಗ್ ಮಿ ಮೀಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹುಷೇಳುಮ್ಗೆ ಕುರಿಯಂ ಅಳಗುಣ ಬೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೂರಂಗೆ ಬೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೂರಂ ಹಾಸ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಮಾಲೇಗ ಫರಾತ್ ಫಿಯ ಮಿಸಾಲ ಹಾಸ ಗೊತ್ತೆ ಮಾಲೇಗ ದಿಗುಮುದ್ದತಗ ದಿರುಳು ಫಹುರಿ ಫರಾತ್ ತಕುಂ ಫರಾತ್ ದಿರುಳು ಕಂ ಕಶೋರ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಕಮಾ ಗುಳೆ ಲಿಯಕಿಂ ತಕಾಯ್ ಮಿ ದಾರಿಂ ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೊಸ್ಸ ಹುರಿ ಮೌದು ಮಾತಕ ವಜೀಫಾಯ ಗುಳೆ ಲಿಯಕಿಂ ತಕ ಮಿ ಇಗುರಾರ ಅದಿ ಮಿ ಮಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕಹಲಿಯಕ್ಕೂ ತಕ ಕಿ ತಯ್ಯಾರು ಸಹೂರಿ ಲಿಯಕ್ಕೂ ತಕ ಕವಾನ್ ಜೆಹೆ ಮಾಣೆ ಕಿ ಮಿಸಾಲಕ ಇಗ್ರಾರ್ ವಿದ್ಯ ಇಗ್ರಾರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಫ್ ತಂತನ ಮಿ ಮಾ ಕುರವಾಫ ಸೋಯಕುಫ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಜಸ್ವಾಫ ಎ ಅಪ್ಲೋಡ್
0: ಕೊರಿಯಾ ಕಮೆ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊರಬ್ಬೈನ್ ಹುಶಾಳಂ ಕು ಫುರ್ಸತ್ ಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಮೆ ಹಮ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಡೈನ್ ರಂಗಳ ಮಾಲುಮಾತ್ ತೇನೆ ಗತು ಗಮೆ ಮುಹಿಮ ಕಮ ಕಿ ನಿಮಾಲ ಬರ ಕುರ್ಕೋ ಕಿ ಕಿತು
1: ಆದೆ ಎ ಎ ಎ ಗೊತ್ತ ತಯ್ಯಾರು ವೀಮ ಅರುಣ್ ಮಿದನ್ನ ವಣಿ ಗಾಯಕ ಗಂಡಕ ಫಸ್ವರ ಕಮಿಟ್ ತೆರೆ ಗಾಳೋನ್ ನಂಗೆ ಮಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಿ ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೆರೆ ಹುಶಾಳ್ ಬಾರ ನಿಂಗೆ
0: ಕರ್ಬರ್ ಶುಕ್ರಿಯಂಗೆ ತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಮನ ವಗುತ್ ಕೊಳ್ತೇವೆ ವೀತಿಂಗೆ ತ
1: ಆದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾ
0: ಆದಾ ಶುಕ್ರಿಯ ಅದಮಿ ಆರು ಕಡಿಂಗ್ ಹೋಗಡಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್ ತೆ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ ತಿವೆ ಫುರ್ ನಾಯ್ಕಿ ವಾಕ ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ತು ಹೋಗೆ ಮಾವಲು ಮೆ ಬ್ಯಾಗನ ಮೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಏರು ಕೊಳ್ತಿ ರಣ ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾನ್
2: ಅದುಗೆ ಖಾಸ
0: ಅದೇ ಖಾಸಮಿ ಬ್ಯಾಗ ಬೈಕ್ ಅಂಕಂ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಯರುಗ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾಸಮಿ ಬ್ಯಾಗ ಮೇಲೆ ಫಾಹ ಕೊರಫನಿ ರಾ ಅಲಿಫುಶಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಟರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅದೆ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ತಮ್ರೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾರ ಫುರ್ಸ ತುಳು ಆಲಾಫೆ ಬಂಗೆ ತೊ ಈ ಮೋಲ್ಡಿ ಸ್ವಿಮಿನ್ ಲೈಫ್ ಸೇವಿನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ ಗುಳಿಕೆನ್ ರಾ ಅಲಿಫುಶಿಗ ಹೈದೋಗ ಮೊದಲ ಕೊರಿಗೆಂದು ಮಹಮ್ಮ ಜೀಫಾ ವಾಟರ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಫಶನೆ ಮೀ ಅದಂಗೆ ತೊ ದೆನ್ ಮೀ ತಮ್ರೆನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮೀ ಸಲಾಮ ಕೊರ್ಮಗೆ ಹುಣರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದಿ ಕುಲ್ಲೆ ಹಾಲೆತ್ತೋಗ ಈ ಜಾಬದೇನು ಗೊತ್ತ ದಸ್ಕೊ ದಿನಮ ಹಿಂಗೆ ವರ ಮೊಹಿಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀ ಮುಳಿ ಹಿಲೆ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಹೆಮ್ ಮೀಮ ಮಿಯದುಂ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ಜೋರ್ ಮೊಹಗೆ ಹತಕ ತಮ್ರೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯ ಮಿದನಿ ಹೆಂದುಣು ಸೆಷನ್ ಮಿಹಾರ್ ಫೆಶಿಜ್ಜೆಂಗೆ ತೊ ಬಾರ್ ಜಹಮ ಹಮೆ ಮೆತ್ ಬೆಂದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಮೆತಿ ದೇಕುಂ ಹತರು ಗಡಿತೀರಿ ಹ ರೇಗನ್ ವಿಸಬೆ ರೇಗನ್ ರಶಕುಂ ನುವ ಗಡಿ ಭಯ ಹೆಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಮ್ರೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾರ ಮ ಫುರ್ಸತ್ ಎತಿ ಹುಳು ಅಲೆ ಫೇಮ ಹುರಿ ಹಫರತ್ ಮಿಕಮ ಶೋಗುರ ಫರಾತ್ಗ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ಮಾಕಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಫ ದೇವಳಗೊಮ್ಮೆ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ತೋಹಗೆ ಮಾವಲು ಮಿ ಭಯ ಕೀಗ